0: सोलो एफ एम एक सौ एक दशमलव दुई मेगा हर्ट्ज उज्ज्वल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: डिजिटल
0: कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुर्कुण्ड नगर पालिका पांच सोलु कुम्बु।

हजारों रेडियो कार्यक्रम और करोड़ों नेपाली को मास यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।

0: सुनत मेरो कपड़ा प्याकिंग कर दू तो श्यामजी को मिसेस लाई कैंसर उपचार करा इंडिया संगे लिए जानु पर्ने हो
1: ए हो रुन्न त अब कैंसर को उपचार सीएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट भरतपुर में पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएंट ट्यूबिंग 60 काउंस र हाइपर आर्क लगायत का अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग करी मस्तिष्क में रहकर ट्यूमर फोक्सो को कैंसर स्तन कैंसर घाटी तथा टाउको संबंधी कैंसर पेट तथा कलेजो संबंधी कैंसर पाठेघर को मुख गर्भाशय तथा मूत्राशय संबंधी कैंसर तथा अन्य कैंसर को उपचार हुन्छ। कैंसर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएशन को माध्यम पूर्ण रूप में निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पताल की सेवा शुल्क में उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1,00,000 सम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ।
0: यस्तो सुविधा रहेछ, म अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छु।
2: क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट।
3: फोन 056-494-333, 493-555।
4: अब इन्टरनेट ढिलो होइन, छिटो स्मार्ट र सुरक्षित। इन्ट्रोड्युसिङ वाइफाई 6 विथ सुविसु सुरक्षा।
5: वाइफाई 6 सँग पाउनुहोस् हाई स्पिड र स्टेबल इन्टरनेट।
4: साथै सुविसु सुरक्षाले तपाईँलाई राख्छ अनलाइन ब्राउजिङमा सुरक्षित।
5: हानिकारक साइट, असुरक्षित कन्टेन्ट अब सबै इन्स्टेन्ट ब्लक हुन्छ।
4: सुविसु, छिटो पनि सुरक्षित पनि। थप जानकारी तथा बुकिङका लागि
3: 9 42 38 88 98 12 8 8 8

0: चाड़ पर्व में यूरो पेंट प्रस्तुत कर रंगीन ऐसी घर बरसिन उपहार रु 50,000 को यूरो पेंट को खरीद में पाउन लकी ड्रॉ कूपन पाउन 3 वर्ष एसी 1 जन डबल डोर फ्रिज इंडक्शन चूलो राइस कुकर वॉल क्लॉक बम्पर प्राइस में पाउन 1 जोड़ी को लगी बाली टूर यूरो पेंट घर मात्र होइन रंजाउन सपना बनी
1: महालेखा परीक्षक को कार्यालय को अनुरोध महालेखा परीक्षक को कार्यालय को स्वीकृत लेखा परीक्षण नीति तथा कार्यतालिका अनुसार आर्थिक वर्ष 2082-83 को आर्थिक कारोबार को लेखा परीक्षण गर्न प्रथम चरण में 44 जिल्ला का संघ प्रदेश र स्थानीय तह का कार्यालय में लेखा परीक्षण टोली खटाइएको छ। लेखा परीक्षण में सघाउ पुग्ने आर्थिक काम कार्यवाही को सूचना तथा जानकारी एवं लेखा परीक्षण टोली को कार्य सम्पादन का सन्दर्भ में कुनै सुझाव तथा गुनासो भएमा कार्यालय को टोल फ्री नम्बर 18-1050-0061 मा रेकर्ड गराउनु हुन वा gunaso@oagnep.gov.np मा इमेल गरिदिनु हुन अनुरोध छ। प्रथम चरणमा लेखा परीक्षण हुने जिल्लाको विवरण कार्यालयको वेबसाइट oag.gov.np मा प्रकाशन गरिएको छ।

0: जना स्टेट स्कूल नेपाल को स्टूडेंट होम प्रोग्राम को लगी एक जना मूल कर्मचारी औसत भेगा दरखास्त आह्वान करे शिक्षित तथा योग्य उम्मीदवार विस्तृत जानकारी तथा आवेदन का लगी DOBS@NEPL.com में प्रकाशित सूचना योग अनुरोध कर
1: दरखास्त दिने अंतिम मिति यही भदौ 15 गते अर्थात अगस्त

साँझ पर दर्द छोड़ी गाँव घूम जानून बाघ भालु बैरा हाथी चिप्ल पसे पछी धन जन को क्षति हुन्छ चुपचाप बसे पछि।

0: ওই সাথী হিরো নেই কেন কথা শোনো তার এই সাথে বয়ফ্রেন্ড আমি কি কি
1: কোথায় কি আয়োজিত হ্যাঁ এর থেকে পড়তে আসে রোহন সামাজিক সংগ্রাম আমাদের এর থেকে পড়তে আনু পড়ছে তো মিথ্যারে ভ্রামক সূচনা অনুষ্ঠ স্যার এসে না আটি না এসব জানলেন নাকি আসেন
0: মিথ্যা ভ্রামক মানুষ কি নিয়ে
1: তুমি থাকে না
0: থাকে
1: শুন মিথ্যা সূচনা ভালো আসলে থাহানাই না পায় কুড়া লেখনি বা ফৈলাউনে কুড়া অনেক ভ্রামক সূচনা ভালো যে জানি জানি নিয়ত বস আপনার ফাইদা বা স্বার্থকা লাগে ফৈলাউনে গলত সূচনা এস্তা সূচনালে সমাজলাই ভ্রমিত বনাউছ খণ্ডিত পার্ছ নিরাশা বড়াউছ র অবিশ্বাস পনি সৃজনা গর্ছ
0: ওহো তেসো ভাই তো এস্তা সূচনা শিয়ে নাই বড় হুদিন রয়েছ হে
1: ওলে ভ্রামক র মিথ্যা সূচনা শিয়র তথা কমেন্ট কে পনি গর্নু হুদাইন শিয়র গর্নে ভয় পনি তো সূচনা সত্য তথ্য হো কি হইন এতিন গর্নু পর্ছ त्यसको स्रोत थाहा पाउनु पर्छ नीति र फोटो मिल्छ कि मिल्दैन राम्रोसँग हेर्नुपर्छ आधिकारिक माध्यम हो कि होइन त्यो पनि थाहा पाएर मात्रै सेयर र कमेन्ट गर्नुपर्छ बुझ्यौ
2: भ्रामक सूचना नफैलाऊ जिम्मेवार नागरिक बनाऊ
3: आधिकारिक स्रोतबाट प्राप्त सूचनालाई मात्र विश्वास
4: गरौ
5: म हजुरको बैंकबाट बोलेको तपाईँको मेसेजमा एउटा ओटिपी नम्बर आएको छ मलाई दिनुहोस् त तपाईँको खाता अपडेट गरिदिन्छु
4: हुन्छ हुन्छ पठाउँछ है ए ए नानी छोरी
6: हजुर
4: यहाँ आऊ त नानी यहाँ हेर त यहाँ बैंकबाट फोन गरेर के नम्बरमा आएछ दे त नानी
6: ल हेलो नमस्ते
5: हेलो हजुर त्यहाँ आएको ओटिपी नम्बर भन्नुहोस् त म तपाईँको खाता अपडेट गरिदिन्छु
6: ए मलाई मूर्ख बनाउन खोज्नु भएको तपाईँले मेरो मेसेजमा आएको गोप्य ओटिपी नम्बर तपाईँलाई दिएर हामीलाई लिप्नु
4: ए नानी के भन्ने रहेछ के भयो
6: हेर्नुहोस् त ब्याङ्कले कहिले ओटिपी नम्बर माग्दैन अपरिचित मान्छेलाई आफ्नो व्यक्तिगत सूचना दिनु हुँदैन यस्ता ठगले प्रलोभन देखाएर ठगी गर्छ अबदेखि कसैले ओटिपी नम्बर माग्यो भने नदिनुहोस् है बा
4: ल ल ल किन दिन्थे
2: अपरिचित व्यक्तिलाई आफ्नो इमेल वा अन्यको पासवर्ड बैंकको युजर जस्ता संवेदनशील सूचना र जानकारी नदिऊ
7: बलियो पासवर्ड राखौं र समय समयमा परिवर्तन गरौं
2: ठगीको शंका लागे तत्काल नजिकको प्रहरी वा नेपाल प्रहरी तथा साइबर ब्यूरोमा जुरी वा जानकारी गराउ
7: अनलाइन ठगी बारे सचेत बनाऊ यसबाट आफू पनि जोगिऊ र अरूलाई पनि जगाऊ
2: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड

साझ पर्दा घर छोड़ी गाँव घूम जानून बाघ भालू बैंगा हाथी चितल पसे पछी धन जन को क्षति हुन्छ चुपचाप बसे।

मेरे आंगन पर नींद है होशियारी अपना जोखिम टाड़नी भाई वारी पारी झाड़ी बूटिया घास रखना साझ पर्दा।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्रमा।
2: का विशेषता
3: जापानीज ऊर्जा प्रहरी उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भरपर्दो
3: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लन्च।

एक स्कूल नेपाल को सेकेण्ड होम प्रोग्राम को लगी एकजना महिला कर्मचारी औषित भैया दरखास्त आह्वान कर शिक्षित तथा योग्य उम्मीदवार विस्तृत जानकारी तथा आवेदन का GOBSNEPL.com में प्रकाशित सूचना हेने अनुरोध कर दरखास्त दिने अंतिम मिति यही भदौ 15 गति अर्थात अगस्त

0: Raio Rádio Luz, todo evento Tarandã.
1: Tolu FM, 101.2 MHz. Ujjwal bhavishyako lagi, hamro abhiyan.
2: Sound check. Studio FM, studio time.
3: It's 3 PM. News report 3 baje.
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू।

to your heart. Solu FM 101.2 MHz. कार्यक्रम आफ्नै पाका आफ्नै भाका को साथ में सागर इलेक्ट्रोनिक्स सेंटर तथा मोटरसाइकिल वर्कशॉप

0: అత్యంత విధి ఈమె గర్భణము ఒక స్థూత నాకు కావలసిందని బిజులికి సామాన్ కింద బజార్క చార్చారుటా పోసం చారి కొత్తే పైన अब सामान्य काठमाडौँ नै जानुपर्ने हो कि क्या धत बहन तिमी पनि कस्तो सम्झनामा छौ बिजुलीको सामान लिन काठमाडौँ किन जानु हाम्रै सुलुखुमा सबै थोक पाइन्छ त
1: ए हो र दिदी कहाँ पाइन्छ म त खोज्दा खोज्दा थाकिसके हौ
0: ल सुन बहिनी सुलु दुखुमा नगरपालिका वडा नम्बर पाँचमा भएको शान्ति स्टोर एण्ड सप्लाई छ नि त्यहाँ बिजुलीका सम्पूर्ण नयाँ सामानहरू होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाइन्छन् बोर्ड आधुनिक स्विच वाइरिङका सामान जे खुजो त्यही तयार लौ नयाँ सामान पनि पाउने पुरानो सामान पनि मर्मत हुने यो त ढुङ्गा खोज्दा देउता मिले जस्तै भयो नि दिदी हजुर बिजुलीको भरपर्दो सहयात्री शान्ति स्टोर एण्ड सप्लाइज सोलु दुखुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर पाँच सल्लेरी सोलुखुम्बु यहाँ बिजुलीका सम्पूर्ण सामानहरू होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाउनुका साथै नयाँ तथा पुराना सामान मर्मत पनि गरिन्छ थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बरहरू कुलनारायण श्रेष्ठ 97-63-00-57-84 र विवेक श्रेष्ठ 98-62-82

0: इस सोलुकुंड कैनन कैंपस में शैक्षिक सत्र 2083-84 को लगी 3 वर्ष ग्यालरी प्रथम वर्ष को भर्ना खुले कुछ विषय में स्नातक तह उत्तीर्ण कर इच्छुक व्यक्ति निम्नअनुसार भर्ना होने जानकारी कराइन भर्ना कार्यक्रम को नीति भर्ना के लिए आवेदन फारम वितरण भदौ 1 गते देखि भदौ 30 गते समय प्रवेश परीक्षा असोज 10 गते नोटिसा प्रकाशन असोज 11 गते भर्ना मैथ असोज 12 गते देखि असोज 25 गते समय कक्षा संचालन कार्तिक 10 गते देखि रजिस्ट्रेशन फारम भरने मैथ कार्तिक 30 गते समय सब जानकारी का 98-51-01-05-56 98-41-28-45-45 र 98-42-84-87-75 गीता घिमिरे कैंपस प्रमुख सोलुखुम्ब कानून कैंपस पल्ली
1: मात बोलो सदैभरि यसो पेस्ने रोजे।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: संक्षेप सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 4 PM अपराह्न को 4 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुखुम्बु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु

सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन सुन

0: गोल्ड एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Sanche Surya Fan Studio Time.
2: It's 5 PM. Saturday, 5 PM.
3: Time check को साथ में New Star Digital Color Lab तथा ज्वालामय Offset Press सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु कुंभू

0: प्रमाणपत्र को प्रतिलिपि, सहकारी समूह को हक में कार्य समिति को निर्णय को प्रतिलिपि, समूह संस्था को स्थायी लेखा नंबर पैन दर्ता वा कर चुक्ता प्रमाण पत्र को प्रतिलिपि, संबंधित स्थानीय तह ओडा को कार्यक्रम में दोहोरो सहयोग नभएको वा नहुने सिफारिश पत्र सूचीकृत वा कार्यक्रम प्रस्ताव छुट्टा छुट्टै बेवरा खुल्ने गरी सिफारिश राख्नु पर्नेछ।
1: थप जानकारी को लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई ओखलढुङ्गा टेलिफोन नम्बर 0735527711 वा सूचना अधिकारी को नम्बर 9852280 जोन प्राविधिक इकाई सोलुखुम्बु 0385247 सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ।
0: हेमबहादुर आले मगर निमित्त वरिष्ठ कृषि अधिकृत राष्ट्रिय कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई ओखलढुङ्गा।

0: सोलू एफ एम 101.2 MHz उज्ज्वल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: 6 PM 4:00
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुम नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू।

0: तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: Studio time.
0: It's 7 p.m. Start to start with.
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु

0: πάνω σαν κάθε μια αστυνομία που είναι να πάρει το βαρό του κουκάμπα, είναι το ζάνκα την ώρα. Τώρα, υποξή τον καπιτάνι, σαν κάθε φίλμα που είναι να μην ζήξει τον ζάν, να πεσάρουν να μπορούν να δουν κοινικό άλλο που είναι κάτι. Τον προπαγάνδρυ, τότε, νίκο πάκα στο μέτζο που σπέκονταν τα λόγια που σαντάλη, σαν κάτι υποξή να το βρει, αφού είναι σαν τσοπλάι σαν την πιστράσμα λίγο μέσα και που τον βρει.
1: Ορουλάι πανε πιστράσμα λίγο πόρτζα. अरुका अनुभव पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छन् भन्नेतिर उहाँको ध्यान नजानु संसदलाई विश्वास लिने भनेको खाली प्रतिपक्षका सांसदलाई मात्रै होइन कार्यशैलीले के देखाउँछ भने आफ्नै दलका सांसदलाई विश्वासमा लिने मेहनत पनि गरेको मैले चाहिँ देख्दिन उहाँ आउनुहुन्छ कसैको अनुहार नहेरी जानुहुन्छ यो के तरिका हो यस्तो त हुँदैन प्रधानमन्त्री त हामी सबैको प्रधानमन्त्री हो नि जति बेला हामी सबैले भनेका छौँ तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ भनिराखेका छौँ भन्दा भन्दै पनि कसैको पनि अनुहार हेर्न नपर्ने के हो त्यो तरिका
0: प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आन्दिम्बेले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय नभएको आरोप गर्नुभएको छ
2: हामीले मौनता साध्यौं खबरदारी गरेनौं र प्रश्न गरेनौं भने हामी जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट विमुख रहेको ठहर्छ त्यसैले यो पूर्वाग्रह होइन प्रश्न हो केही विषयमा ध्यान आकर्षण गर्नै पर्ने अवस्था भएर म यी विषय राख्न गएको छु राख्न लागिरहेको छु हामी सरकारलाई कमजोर होइन प्रभावकारी प्रश्न गरिरहेका छौं म सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय सरकार र सत्तासीन साथीहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु यो प्रचार होइन प्राण बचाउने समय हो

0: Chay. Sony FM, Studio Time.
1: It's 8 p.m. रात को 8 बजे.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुकुंद नगर पालिका पांच सोलू खुम्बू.
3: आज बिहान 8 बजे प्रसारण भएको कार्यक्रम बदलिदो नेपालको पुनः प्रसारण.

0: पहुंचे। सोनी FM स्टूडियो टाइम
1: इस 9 PM रात को 9 बजे टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुदकुंडा नगर पालिका 5 सोलू खुम्बु।
2: आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सोलू FM। सोलू FM मा अब सुन्न सक्नुहुन्छ नेपाली सदाबहार गीतहरू।